0: मुख्तार जी कहानी अभी खत्म नहीं करते हैं।
1: नहीं
0: करना चाहिए ना,
1: इतना इतना खूबसूरत गाना है। हाँ। तो इतना और इतना जब खूबसूरत ऑडियंस हमारे साथ है तो इस गाने का एक बीच का अंतर जो हमने नहीं गाया है वो हम सिर्फ कीबोर्ड का सुर लेकर गाते हैं और जो मुखड़ा है आप सब हमारे साथ मिलकर गाइए, तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि इन महान कलाकारों को होगी।

0: है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन?
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, आज शुक्रवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ दिन पेश किया जा रहा है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह पेश किया जा रहा है, जहाँ जहाँ पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। जो बीमार या लाचार है, भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है, उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है। सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन अभी आपने सुना। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है जहाँ जहाँ पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं। शुक्रवार का दिन है, माता जी का दिन है, तो आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार रबीन। चले अगला भजन की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुंदर सा माता जी का भजन आप सुनते ही रहना सोनू निगम की आवाज में।

निगम सोनू निगम की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड के जरिए, कंप्यूटर के जरिए हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। और साथ ही साथ सुनने वालों, दुनिया की कोने कोने में सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। चले प्रोग्राम में एक संतोषी माँ का भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश किए गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में ये भजन की ओर हम आपको ले

पे सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। बहुत से सुनने वालों इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं, भजन यात्रा प्रोग्राम जो हर सुबह आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अबकी बार एक भजन पेश किया जा रहा है, अति सुंदर भजन है सोनू निगम की आवाज में, जरूर आप सुनते

की आवाज में अभी आपने सुना आसरो मीठे सुनकर और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये खास भजन जो पेश की गई है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड की जरिए कंप्यूटर की जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं दुनिया की कोने कोने में और दुनिया की कोने कोने में भी इंटरनेट रेडियो की जरिए हर एक इंटरनेट रेडियो की जरिए भी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

प्रति सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं सुंदर सा चालीसा की ओर। श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये सुंदर सा श्री महालक्ष्मी चालीसा बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से।

सुंदर सा श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पीस की गई है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से भी आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: भजन यात्रा प्रोग्राम आपने सुना और बेहद पसंद किया है, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए आज शुक्रवार का दिन। आप सभी सुनने वालों को रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman kleine en grote murti. Supermarkt

0: अच्छा लगा कि आप सुन रहे हैं।
1: 8:00 प्रोग्राम में 13 मिनट वेटेड हो चुका है, 13:08 स्टूडियो टाइट। सुन वालो, आज शुक्रवार का दिन है, 11 सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुन वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है, जहां जहां पर भी आप सभी रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। बड़ी सभी सुनने वालों, सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, हेलो खुद मुर्ख गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है, और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो के अंदर तार जोड़ तोड़ से अंदर आते हैं, आज सुबह से लेकर के काफी तार अंदर आते हैं। हमारा रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी सुनने वालों बस तार कर रहे हैं। इन दिनों जारी जारी सुनने वालों रेडियो SBS का ऐप के जरिए तार कर रहे हैं। सभी को शुक्रिया, धन्यवाद कि आप सभी हमारा साथ देते हैं। आज का मौसम भी बदली बदली सा बादल छाया हुआ मौसम होगा, और समय समय पर कहीं कहीं बारिश का मौसम होने वाले हैं। सुन वालों, आपको मालूम होना चाहिए कि रोजाना रेडियो SBS का वेबसाइट पर मौसमी समाचार होता है, और आपका ज्योतिष शास्त्र रोजाना का ज्योतिष शास्त्र दख होरोस्कोप रेडियो SBS का वेबसाइट पर होता है। तो जब भी आप चाहे अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए आप जाकर देख सकते हैं, रेडियो SBS.NL वेबसाइट होता है, उसी वेबसाइट पर अपना मोबाइल फोन पर आप जाइए, उसी वेबसाइट के जरिए भी आप प्रोग्राम को सुन सकते हैं, अपना मोबाइल के जरिए मेल भी आप कर सकते हैं, और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। कुमार सानू और

शुक्रवार 11 तारीख सितंबर जरूर फॉलो करते ही रहना। बधाइयां भी दिया जा रहा है भाई मिका सुक्खू जो हमारा सूरीनाम देश का मशहूर गाने वाला है, उनको बधाइयां ही बधाइयां दिया जा रहा है उनका जन्मदिन के मौके पर। भाई मिका सुक्खू फन हार्ट फेलिसिटेट।

सानू और अनुराधा पोटवाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। असरों मीठे की गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गए। 9 मिनट बाकी है सुबह साढ़े 8 बजने में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स लेकर के रोजाना।

40 यार रेडियो SBS का प्रोग्राम इसी नाम के साथ बस पेश किया जा रहा है। तेरे नाम फिल्म का नाम, सॉन्ग बाय उदित नारायण एंड अलका।

की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज की सुबह की प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। सुनने वालों आपको मालूम होना चाहिए डे या बे प्लस रेडियो की जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है, खासतौर पर दूर दूर शहरों में हॉलैंडीज के बीच में मिड नीदरलैंड में ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और खासतौर पर प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी ये प्रोग्राम दूर दूर शहरों तक ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जो अपना मौत घर में और खास तौर पर अपना घरों में आप ये प्रोग्राम को सुन सकते हैं। के प्रोग्राम में के की आवाज में ये गाना जिंदगी तेरे नाम फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है।

ये दिल में रहते हैं, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में कुमार सानू और खासतौर पर अनुराधा पोटवाल जी के आवाज में पेश की गई कसम से कसम से। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 03-22-66-66-11। और आज का प्रोग्राम शुक्रवार 11 तारीख सितंबर का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। सभी जो हमारा रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ दिन आप सभी को। प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। अभी तकरीबन 9 बजे से पुरानी नखमे गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ बस पेश किया जाएगी, जरूर सुनते ही रहना। अनुराधा पोटवाल एक बार फिर से प्रोग्राम में साथ में होगा। सोनू निगम, हम किसी से कम नहीं फिल्म का नाम, एक फिल्म जो 2002 में रिलीज किया गया है और गाना का बोल ओ सपनों के सौदागर।

रेडियो SBS के जरिए सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में ये गाना पेश की गए, ओ सपनों के सौदागर। द मूवी हम किसी से कम नहीं, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। शुक्रवार का दिन 11 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना, सोनू निगम और तुलसी कुमार प्रोग्राम में होगा हमको दीवान।

एंड सोनू निगम की आवाज में ये गाना पेश की गई प्रोग्राम में। एक गाना और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे खबरें की ओर, न्यूज मौसमी समाचार फरकीर्स इंफॉर्मेशन। और उसके बाद पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश होगा, कुमार सानू प्रोग्राम में।

सुनने वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आज शुक्रवार का दिन है, 11 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में। बस बीस

तो सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और सभी सुन वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर भी ऐप किया है, गुड मॉर्निंग खुद मोर्ग कहा है आप सभी को शुभ सुबह शुभ दिन नहील खुद मोर्ग गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। गर्मा गर्म गोफी जॉय के साथ पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। उसी सुनने वालों है जो पुरानी नगमे काफी पसंद करते हैं और हमेशा हमेशा इस प्रोग्राम को इंतजार कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हर सुबह ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश करने से पहले आप सभी

तो चले यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर हम आपको ले चलते हैं। ओपनिंग सिलेक्शन पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का आज शुक्रवार।

और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। फिल्म का नाम था आखिर क्यों। अमित कुमार और लता जी की आवाज में गाना पेश की गई। अब की बार मोहम्मद रफी और

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए ये प्रोग्राम दुनिया की कोने कोने में बस सुनाई देता है। मोहम्मद रफी और लता के बाद किशोर कुमार एंड लता होगा

गाना जो पेश की गई किशोर और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना। आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए फिल्म हम झोली की ओर, सॉन्ग बाय मोहम्मद रफी एंड लता। आज की प्रोग्राम में खूबसूरत गाने, खूबसूरत नखमे आप सभी के लिए पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है हम झोली, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म का नाम हम जूलिए, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारी बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और अपना अपना रिएक्शंस भी देते हैं। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और लता की आवाज में ये गाना जो पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गए, दिल में क्या है। फिल्म जिगरी दोस्त, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रवीन और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। चले किशोर एंड लता की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो वेव्स में इसके जरिए किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। शहर उत्रेख हॉलैंड देश का सबसे खूबसूरत शहर से ये आवाज बस निकलते हैं। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, फिल्म का नाम काला पत्थर।
1: सांसों में तेरी

एक गाना जो पेश की गई फिल्म का नाम काला पत्थर, उसी फिल्म से मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेशम लगता है लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे लता की आवाज में ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चलिए एक बार फिर से लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। साथ में होगा मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी और लता की आवाज में फिल्म तलाश का गीत पेश किया जा रहा है।

द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले महेंद्र कपूर और आशा जी के

गाना बज प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। चले अब की बार मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं पुरानी नगमे रेडियो SBS की जरिए जो पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए है। मोहम्मद रफी के बाद चले किशोर कुमार की ओर।

किशोर कुमार, किशोर कुमार के आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। असरों मीठे ये खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आपने सुना और बेहद पसंद किया है। किशोर कुमार के बाद लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आज की इस पुरानी नगमे की।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03025656060। चले प्रोग्राम में मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। मुकेश और लता की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है कुछ ऐसे बंधन होते हैं।

लता जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में कुछ ऐसे बंधन होते हैं। सुनवालू रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं। मोहम्मद रफी

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे मुकेश और लता जी की आवाज में, जो पेश किया जा रहा है

मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना प्रोग्राम में होगा मुकेश लता और मोहम्मद रफी की आवाज में। मुकेश लता एंड मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार एन लता जी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चलिए एक गाना लता मंगेशकर की आवाज में जो पेश किया जा रहा है, काफी पुरानी फिल्म का गीत है जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये पुरानी फिल्म का गीत आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अपनी बार मोहम्मद रफी और लता

0: रेडियो एसपी इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एडो फिल्म हमको तुमसे प्यार है उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक बार फिर से उदित नारायण प्रोग्राम में हमारा फिल्म का नाम।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समी पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। उदित नारायण की आवाज में ऑडियो फिल्म हबरास, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई। चले कुमार सानू और अलका जे की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

uit de film Kya Kehna. Alka Yagnik en Sonu Nigam की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए सोनू निगम और अलका जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए हिट फिल्म क्यों हो गया ना, इसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं और फिल्म का नाम है लगे रहो मुन्ना भाई। उसी फिल्म का ये गाना अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए जेम्स की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में राहत जी की आवाज में ये गाना बस पेश किया जा रहा है।

गुलाम अली की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आइडो फिल्म बेवफा फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की।

सभी सिनेवाले की सेवा में। चलिए फिल्म द बॉडी की ओर। श्रेया घोषाल की आवाज में गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

शुक्रिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना।

इसमें अभी आपने सुना खास गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड की जरिए, कंप्यूटर की जरिए आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें भी होते हैं, मौसमी समाचार और अपना दाह होरोस्कोप यानी कि ज्योतिष शास्त्र के लिए जरूर आप उसी वेबसाइट पर जाइए।

रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू और

और रेडियो SBS की इसलिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में अगली बार एक गाना की ओर आपको हम ले चलते हैं। उदित नारायण की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है उदित नारायण की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। उदित नारायण और देखा जाए अलका याग्निक भी होगा।

ये काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है लाइव के जरिए प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है किशोर और आशा जी के बाद मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

हमारा फेवरेट एक्टर धर्मेंद्र का एक्टिंग किया हुआ फिल्म कब क्यों और कहां, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में। चलिए धर्मेंद्र का एक और मूवी की ओर, फिल्म की ओर, तुम हंसी मैं जवान। मरहूम मोहम्मद रफी एक बार फिर से प्रोग्राम में।

हूँ मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में तलत महमूद और लता जी की ओर। और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम रूप की रानी चोरों का राजा। द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद एंड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर। तो रूप की रानी मैं चोरों का

तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर। हम आपको ले चलते हैं अपनी बार फिल्म दुलारी की ओर। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश किया जा रहा है कि मिल मिल के गाएंगे। काफी पुरानी फिल्म है, फिल्म दुलारी। उन्नीस सौ उनचास का फिल्म, 1949

दुलारी का गीत पेश की गए। सुनने वालों चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं यसुदास की ओर। हमारे बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो यसुदास की गाने बहुत पसंद करते हैं।

यसुदास के आवास में पेश की गई चार दिन की जिंदगी है। फिल्म का नाम एक बार कहो, 1980 का फिल्म, 1980 का फिल्म का गीत यसुदास की आवाज में बस पेश की गई। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, हर एक को खबर कीजिए रेडियो SBS के बारे में। किशोर कुमार

कुमार, किशोर कुमार के आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर की ओर हम आपको ले चलते हैं और फिल्म का नाम होगा दुल्हा दुल्हन।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। लता के बाद हम आपको ले चलेंगे मरहूम मोहम्मद रफी की ओर। एक नारी दो रूप फिल्म का नाम होगा। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आज की प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में पेश किया जा रहा है। संसार है एक नदिया, हम आपको ले चलते हैं द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर।

12 मिलियंस द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकीस के बाद हम आपको आज की प्रोग्राम में फिर से ले चलते हैं लता मंगेशकर की ओर। एक काफी पुरानी फिल्म का गीत अब की बार आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। लता मंगेशकर की आवाज में जरूर आप सुनते ही रहना।

और रेडियो SBS के जरिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में एक और गाना लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, साथ में होगा महेंद्र कपूर।

रेडियो SBS के जरिए। ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में अभी आपने सुना ये खास गाना। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और आशा जी की ओर। श्री रामचंद्र का संगीत पर एक गाना पेश किया जा रहा है, आपका चेहरा माशाल्लाह। गाना का बोल है आपका चेहरा माशाल्लाह, मोहम्मद रफी एंड आशा।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशिली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमाल, दिस इज यू आरजे अंशिली क्रमलाल, तू वार्त वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030-2-62-66-11. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-2-65-65-60. Het eerste liedje van vandaag is...

बिंदिया चमके चूरी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे, इस गजोंग दूर सोनू निगम एनल के याचने कैन कम तो द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे। Uit de film Bajrangi Bhaijaan is het volgend liedje via Radio SBS. In het programma Geet om Kilaher hoort u dan Elele, elele, elele, elele, elele, tel beta selfie, lele, re.

0: किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देख के। बेहतरीन गाना आपने सुना फिल्म तरकीब से, जगजीत सिंह और अलका याचने की आवाज़ में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म दिलविल प्यार व्यार से आप सुनिए गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम।

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना फिल्म खुदा हाफिज से। आप हमारी जान बन गए, मिथुन, विशाल मेहरा और अजीज कौर की आवाज में। और अगला गाना रेडियो SBS का प्रोग्राम में है फिल्म ऐतराज से। उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुनिए गीला गीला गीला दिल गीला गीला।

देखो दिन ये न ढलने जाए. दित प्रातः लीजिए इस गजंग दोर आशा भोसले एंक वाम आयो दे फिल्म भावना. आयो दे फिल्म हाल्फ गर्लफ्रेंड इस इत फोगंत लीजिए फिया राडियो SBS गजंग दोर श्रद्धा कपूर. मैं फिर भी तुमको चाहूंगी.

बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफ़र है। धड़क आहिस्ता है ये दिल, मोहब्बत का सफ़र है। कम आउट द फिल्म जॉगर स्पार्क। गाँव द फेदर मैट आउट द फिल्म रईस। खसों दुर पौनी पांडे कम लैला में लैला।

भी सरफिरा तू भी सरफिरीज, गजोंग दोर सिद्धार्थ माधव, नीति मोहन एंड करण मेहता, एंड कम्ड आउट द फिल्म कट्टी पट्टी, एंड आउट द फिल्म कभी अलविदा ना कहना कम्ड द टाइटल सॉन्ग, गजोंग दोर अलका याचनिक एंड सोनू निगम।

जीता था जिसके लिए मरता था, एक तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता था। इस सुमधुर कुमार सानू है, बस आई द ऑल द फिल्म दिलवाले। हाँ मतलब फेरदर मैथ बजरंगी भाईजान, खुशामदूर जावेद अली कौम, तू जो मिला।

0: अभी तक है हसी और मैं जवान, खुद को कुर्बान मेरी जान मेरी जान।
1: ए मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। फिल्म वक्त से आपने सुना मन्ना दे की आवाज में, और रेडियो SBS FM के प्रोग्राम में आप सुनिए अगला गाना। KK की आवाज में आप सुनिए फिल्म गैंगस्टर से, भीगी भीगी सी है रातें।

फिल्म तमाशा से आपने सुना अरिजीत सिंह और अलका याचिक की आवाज में अगर तुम साथ हो, और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में। कमाल खान और अलका याचिक की आवाज में आप सुनिए तुमको ना भूल पाएंगे से, क्या हुआ तुझे।

तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। इस आयुध फिल्म पर रिंदा खजांदोर आशा भोसले एंड सुरेश वाडकर खजांदोर हेमंत कुमार कोमदान आयुध फिल्म खामोशी फिया रेडियो SBS तुम पुकार लो।

तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया। इस किस्म तो श्रेया घोषाल एंड फरहान सईद दिल चकवा में द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड। गाँव दा फेदर में कितनी बातें याद आती है द फिल्म लक्ष्य।

दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, आपने सुना फिल्म रोजा से। और अगला गाना है जय जय शिव शंकर फिल्म वॉर से। ये एक फिल्म है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का।

तू है अब जो बाहों में करार है, रब का शुक्राना आपने सुना जन्नत दो से। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है जिन्नी वेद सनी से, मिक्का सिंह, नेहा कक्कर और बादशाह की आवाज में। आप सुनिए सावन में।

बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी। ये बहुत ही खूबसूरत अल्फाज आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म वत से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है चाइना टाउन से। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज़ है हमारा दिलरुबा।

पैसा ये पैसा आपने सुना टोटल धमाल से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है जाने तू या जाने ना से। राशिद अली की आवाज में आप सुनिए कभी कभी अदिति, जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है।